0: Station Metro Plus AM 1044.
1: नमस्ते ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਜ ਹੈ ਜੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ 1 2 3 4 5 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋ ਪਹਿਲਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਹੇਅਰ ਇਟ ਗੋਸ ਓਕੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਦੋ ऑलराइट सो हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। हर महिला को अपने ब्रेस्ट्स के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए, हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहे। कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दें, जैसे कि ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फ़र्क, निप्पल का अंदर खींच जाना, स्किन का टेक्स्चर बदल जाना। अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो, जल्दी पकड़ने से ज़िंदगी बच सकती है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो और अल्कोहल छोड़ दो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर, वेबसाइट है www.cancer.gov.hk/breastcancer। अपना ख्याल रखें। ओके बढ़ते हैं जी पहले गाने पर। इट्स रिक्वेस्टेड बाय एनोनिमस और गाना जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो है मुलाकात बाय जसा ढिल्लों एंड जोश सिद्धू। एंजॉय द सॉन्ग।

And welcome back. Our next announcement is employment services of the labor department. क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि कहां से मदद मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट के 10 जॉब सेंटर्स में बिल्कुल फ्री मदद मिलती है. लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन ले ले. एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से मिलें, अपनी नीड्स डिस्कस करें और स्पेशल प्रोग्राम्स ज्वाइन करें जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं. एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लाता है. रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स पूरी मदद देंगे. इंग्लिश या चाइनीज नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी मिलती है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.jobs.gov.hk/em या इंटरैक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. ओके, अगला गाना जो रिक्वेस्ट किया है वो है मनी ने. अर्जेंटिलो का गाना है, महिला मित्र. तो एंजॉय द सॉन्ग.

And welcome back. बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा COVID-19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस. इस सीजन में अलर्ट रहे, फ्लू COVID-19 और सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं. अच्छी पर्सनल और घर की सफाई रखें. खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लें. हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक धो लें. बीमार फील हो तो मास्क पहने और तुरंत डॉक्टर से मिलें. गवर्नमेंट का 2025 और 26 फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है. हर साल वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर. एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है. COVID-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे केयर होम्स वाले, 65 साल के बुज़ुर्ग, 50 या 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमज़ोर लोग और प्रेग्नेंट महिला. ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.chp.gov.hk पर जा सकते हैं. अपना और परिवार का ख्याल रखें. ओके, अगला गाना जो रिक्वेस्ट किया है वो है सनी सिंह ने, और गाने का नाम है पेंडू ओजी बाय खान बैनी. एंजॉय द सॉन्ग.

And welcome back, guys. This one is WFA, the Working Family Allowance Scheme. Working Family Allowance Scheme, जो कि है शॉर्ट में WFA, अब एप्लीकेशन के लिए खुला है. ये हाउसहोल्ड के बेसिस पर अप्लाई होता है. पूरा घर हांगकांग रेसिडेंट होना चाहिए. वर्किंग आवर्स, इनकम और एसेट्स लिमिट के अंदर होने पर अलाउंस मिल सकता है. एक महीने में मल्टीपल जॉब्स के आवर्स काउंट किए जा सकते हैं. अलाउंस लेवल्स नॉन सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड के लिए 144 आवर्स से ज़्यादा बेसिक अलाउंस यानी 1150 हांगकांग डॉलर फुल रेट. 168 आवर्स से ज़्यादा मीडियम अलाउंस यानी फुल रेट ऑफ 1380 डॉलर्स और 192 आवर्स या ज़्यादा हायर अलाउंस यानी फुल रेट ऑफ 1610 डॉलर्स. हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस मिलता है. वो है जी पर मंथ फुल रेट पर मंथ है 1610 डॉलर्स. नोट, WFA ले रहे घर CSSA नहीं ले सकते. पूरी डिटेल्स इनकम एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए आप www.wfa.gov.hk पर जाएं. इंक्वायरीज के लिए 24 आवर हॉटलाइन 2558300 पर जाएं. And our next requested song is by Haider Ali, Mahia by Sahira Naseem. So enjoy the song.

And welcome back. Coming on to our last announcement. This is work arrangements in times of adverse weather and extreme conditions. तूफान बारिश एक्सट्रीम कंडीशंस के टाइम में पहले से प्लानिंग कर लो. एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय से बात करके अरेंजमेंट्स करें. ऑफिस कब आना, कब छुट्टी, कब काम रिज्यूम और कर घर से काम का ऑप्शन. गवर्नमेंट एक्सट्रीम कंडीशंस अनाउंस करे तो सिर्फ वो लोग ऑफिस आए जो कंपनी ने सेफ तरीके से बोला है. बाकी सब जहां हो वहीं रुक जाए. तुरंत बाहर मत निकलना. ज्यादा डिटेल्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट का कोड ऑफ प्रैक्टिस देखिए. ऑलराइट गाइस, सो अभी गोना प्ले नॉन स्टॉप प्लेलिस्ट ऑफ सॉन्ग्स. आई एम गोना से गुड नाइट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप यू लाइक टुनाइट्स शो. एंड मैं अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं एंड आई शैल लीव एंड प्ले यू दिस सॉन्ग्स. Okay, but before I go, I am gonna mention what songs are gonna be played and who it's been requested by. So, abhi jo gana lagne wala hai, wo hai Shady by Chimbawa and Gursidhu, requested by Waleed Raza. Then it's called Chill Kar by Shavi, requested by Baz Khan. Then it's Peace by Karan Aujla, requested by Melissa. Then Never Fold by Sidhu Moosewala, requested by Hassan. Then it's On Top by Karan Aujla, requested by Malik Zain. Then we've got Jutti by Nomi Jatt, requested by Afai HK. Then we've got Court by Gulab Sidhu, requested by Bruno. Then we've got Hathiyar by Sidhu Moosewala, requested by Sonia Kaur. Then we have One Call Away by Arjun Tillon, requested by Anand. And then we've got Meri Jaan by Kamal Raja, requested by Yasir Khan. And the last one we have is 57 by Sidhu Moosewala and requested by Charlie Rana. Alright guys, that's it for tonight. Main leta hun ji aap sab se alvida. So I shall see you next Friday, same time, same place. Tab tak ke liye ji chill karo, tension na lo, te chaddi kalaj raho. Rab rakha, good night and goodbye.

दुनिया ने दिल तोड़ा पर महबूब ने दिल जोड़ा, मैं टूट के गिरता रहा पर उसने फिर से दिल जोड़ा। अब डरे कहीं वो भी ना छोड़ जाए मुझे, दुनिया से नहीं बस इस डर से दिल जोड़ा। कमाल है जो टूट कर दूसरी को आना कर सका, उसकी मोहब्बत ने बस आखिरी दिल जोड़ा।